बिल्कुल जनाब था प्रोग्राम द कॉल जुम करी था सो मैसेज उम कर योर मैसेजेस योर सजेशन विल बी अप्रिशिएटेड सो कम एंड जॉइन अस फॉर द रियल प्रोग्राम द जड़ा खबर ही पखले खबर ही जी राजे जनाब द प्रोग्राम

आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। रूहानी सुकून, ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे। कुरान, सुन्नत, अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगू, ये सब सिर्फ एक जगह, दिलबर एफएम 94 स्वाबी।

सवाबी और इसके मुजाफात में आजान का वक्त हुआ जाता है, बाकी इलाकों के रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें।

सो लेडीज एंड जेंटलमैन द प्रोग्राम लाइव हो रही हो द लाइव और इधर लो डेरे डेरे से आते मेहरबानी बेलाडोना विटामिन सी फार्मूला क्रीम की शामिल यूटीर बेहतरीन स्टेबलाइज विटामिन सी फार्मूला समझे स्किन बिल्कुल ब्राइट कही स्किन टाइट कही स्किन जितना व्हाइट कही औपदी की एंटी एक्सीडेंट प्रोटेक्शन दीजिए देखिए शामिल नया विटामिन सी सॉरी नया सिनेमाइड विटामिन बी थ्री कमचिदा द स्किन कंपोर्स दी द कमई और द स्किन च कम टोन देनो अगर बिल्कुल यो शांत की बिल्कुल बराबर ही देखिए शामिल हेलोरोनिक एसिड तुम जो डीप हाइड्रेशन वर की और स्किन चितन बिल्कुल नरम हो मुलायम साथी जी बिल्कुल लकद बल्ब शांत की कतास हम वाली ग्लास स्किन द ग्लास स्किन द पार इस्तेमाल की बेलाडोना विटामिन सी फार्मूला क्रीम बेलाडोना विटामिन सी फार्मूला फेस वॉश बेलाडोना विटामिन सी फार्मूला सीरम देखिए शामिल अल्फा अरबुटी कमचोटी जाता पावरफुल फार्मूला द पिगमेंटेशन दोबारा होम दी और आग दागोन च बिल्कुल ललर की आगे दोबारा डेरे बेहतरीन फार्मूला था देखिए ग्लोटा तो यौन बूस्ट फार्मूला शामिल था कम स्किन व्हाइटनिंग देखिए डिटॉल लीजिए लिकोराइस एक्सट्रैक्ट शामिल लीजिए कम जो कुदरती तौर पर स्किन वापस पल अगर नॉर्मल हालत बुझी देखिए विटामिन ई प्रोटेक्शन शामिल लीजिए कम जिसका स्किन द खराब दो ना बिल्कुल अमनो अमान के साथ ही देखिए कॉलेजन सपोर्ट कॉम्प्लेक्स शामिल लीजिए कम जो स्काइट स्किन जितना टाइट कही और एंटी एजिंग यानी मतलब दो वक्त नमक की जितना स्किन जितना अगर बुढ़ावा से तो रवानी अगर बिल्कुल टिक गई तो देखिए एलोवेरा शामिल है जी तो देखिए एलोवेरा दीद पार शामिल है जी द बाज बाज स्किन जितना मतलब द खारुख वगैरह कही या सुर्खी द अगे ना स्किन जितना बिल्कुल बच साथी जी और देखिए शामिल व्हाइटनिंग पीलर शामिल है जी व्हाइटनिंग पीलर योदासी बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट से आगे सर स्किन तड़ियर जर तर जर स्पिन वाले और कई नबियारा जी जी तासो हम द दमक द स्पिन वाले द पारा बेलाडोना विटामिन सी फार्मूला क्रीम जाला वाले और पजान पीरियान मरा होले ची मतलब रेडियो पे इस्तेमाल के वेरे सबा माने रेडियो माने बिल और रेना शिदा प्रे दोदा जाला वाला जल जान लम्मा चोई जी द क्रीमानो फार्मूले टोटली यो शांदगी जमंग फार्मूले के चरे बदल दनो बागी की मंगा लेको जमंग बेलाडोना विटामिन सी फेस वॉश दी आग जिनके च दागी प मुखनो माने द फालतू यख्त कम राजी याग जिनके च अक्सर येरी की जमा प दिमाग माने फालतू यख्त चरता रान शिया जमा प दिमाग माने फालतू यख्त दी औ दिस डेर ज्यादा परेशान करी मा नो द अगी द पार मंग पागा जमु चकुम बेलाडोना विटामिन सी फेस वॉश दी बाकी की मंग यो डेर एक्टिव इंग्रेडिएंट चोले कम तची तू जावे लेकी कम तची ओलियम जे कुई लेकी कम तची अरिस्टोलोची वेलेगी औ कम तची एटीसीएच वेलेगी द फार्मूला जमंग

0: कोरोना विटामिन सी फार्मूला फेस वॉश की शामिल है नब्याद ATCH तूजा ओलियम जे देओडेर बेहतरीन के इंग्रेडिएंट जुड़ शुई बेलाडोना जानत द निजदी कॉस्मेटिक जनरल मेडिकल स्टोर्स नवाली और आग जिन के चगा अक्सर दा गिले के जमा बदे मकमाने फालतू इख्त दी या जयरी के मचर तो मकमाने में फालतू इख्तरान शी या अक्सर बाजे बाजे जिन के दिस नरी नरी इख्त बदे मकमाने रागली हुई अक्सर दागिन हम डेर जाती हरी के यर पकारम द जक मतलब दिस सर्जन अक्सर जियाती के सब खुराकों डेर बेंतहा गड़वड़ दी और खासकर बे फार मेचर जिदन मंगले डेर का नुकसान राकी जमन चकम हार्मोन्स दी अगम मंगले डेर गड़वड़ई न आग जिनके छे आगी वाकई खपल स्किन द विख्तून बत सातल वार जमा पखेल लगी द पार बेलडोना विटामिन सी फार्मूला कम फेस वॉश दे द फेस वॉश द आगी द पार डेर आला दे डेर बेहतर दे उरस की द्री टीम इस्तेमाल हुई उरस की दो टीम इस्तेमाल हुई यो टीम इस्तेमाल हुई उरस की यो टीम इस्तेमाल होल डेर जरूरी दे जरे दिशा बमक मारे डेर फालतू विख्त हुई मंग आगी तदानो हुई चितासुल बदा विख्त खत्म ही न जिना उमंग दावे ले शू इस्तासु विख्त बजियाते दो तन प्रीरी अवल बता जरे दिशा बमक मारे नरी नरी विख्त दी अगर बोले उरस पोरस बाने रजई तो कचरी तक जिनई बल फेस वॉश नहीं इस्तेमाल है दाने जो मतलब ये उरस ये इस्तेमाल बल उरस बल इस्तेमाल हुआ कचरी दी ते जिदन उख पल मलगरी हुई ली संग जो मुंग दावाई चो बेलडोना फेस वॉश स्किन फ्रेंडली फार्मूला दा लगे दार चा दा पार सूटेबल दा नो कचरी कम जिनई में इस्तेमाल है लेकर उस पमक बाने जग जोड़ कर लो बदती मतलब दाने दे दबाजे बाजे खल गुजेन की सवाल रजी का ना लेकिन ये मतलब जब जग जोड़ कर मुदा खुद मग ना फालतू इख्तला लेकिन वाई ने जमा जमा चरता उरी जिले रे ने की जी नूरी जी फालतू इख्तू की ना रजी खान वी आर not talking about urizi mung chukum lagiya yu kum khabar ko mung da faltu yu khto khabar ko mung da extra here khabar ko da faltu yu khto khabar ko ji na aag sok chaga da faltu yu khto na zan bachkol gwaadi o ya da faltu yu khto na pareshan di da agi da para zama da paigham de chi zan ta da nizdi cosmetics general medical stores na baladona विटामिन सी फार्मूला फेस वॉश कम चे मौजूद वक्त की दुकानों ने की कम प्राती हुई आगे बढ़ते गोरे मिलावी की पद दुनिम 100 रुपए वानी औच दारा रवान कम जमुंग फेस वॉश दी यानी मतलब दारे चे जमुंग कम ट्यूब खत्म शिवे दे और आरवान दी अब तब 300 रुपए वानी मिलावी की नौका खबर दादा तो हम नंद मरदान मुख्तलिफ कॉस्मेटिक्स जनरल मेडिकल स्टोर तो रूज आई औतरी ने तपूस तो कही वे चेरे दा कम से के मिलावेगी कम से के न मिलावेगी अलबत्त जमा पखेल बासे तक सर रागले देता सुजदनो दगा دا مختلف کم دکانوں کم نمونہ دی یا کم ایڈریسز چی دینو آگے دا شامل کری دی او دا تیویلی البتا مردان شہیدانو بازار چاند مارکیٹ کی دا گل اجی سیب سر جدنو دا بیلڈونا پروڈکٹ سٹور ملاوی گی زبیام لگیے میں دا زمان دا مردان کم گروپ دے دی کہ زگورم چی گجر گڑی پاٹک بخشالی تالاش بازار کاٹلنگ دوبیان چمتار رشکی مردان او ڈیر ایریا دا چون کے باسط لکلی دی مانے دی لکلی دی کہ زلگ کنفیوز کیے گا موزلے گیے ماں باچا کاسمیٹکس آئی تنگ جدل دورتا چاہ دا کارڈ را لے گلے دے باچا گارمنٹس دکان نمبر دویم خٹان روڈ کاٹلنگ اڑتا ویلے کی دگل تا باچا گارمنٹس دے دی سر دے بیلڈونا پروڈکٹ سٹول ملاوی گی دلہن شاپنگ سینٹر اینڈ کلاتھ ہاؤس ملکن روڈ جنڈئی بازار اور تویلے گی خانزیب اوکلی ملا سر بیلڈونا ملاوی گی دین علاوہ زین کلاتھ کاسمیٹکس اینڈ کلولا سینٹر دبئی اڈا روڈ بخشالی کی ملاوی گی شمس میڈیکل سٹور دید زید انومی ندر علی گلی دا کم زیدے خو دائر علی گلی اور تو جیو یوزل بیام آغ سوک چگی اس دا ریڈیو فریکوینسی ٹیون کڑی ویو دا مردان دا ریڈیو نظم آواز اور یہی دا دعوی الگوارم زمانم حیدر علی زمانم حیدر علی مومند جی رازی دی لائف کال لارے ماسر خبریو کی دی لائف کال لارے دراتلو دبار دا سٹوڈیو دی لائف کال نمبر 0312-88-150 زمان دا سٹوڈیو دی لائف کال نمبر مونگ سنگ ذکر کرو تو بیلڈونا ویٹامن سی فارمولا فیس واش ذکر مکونو چیر مطلب دیکی مونگ دس ایکٹیو انگریڈینٹ چولی دی چاپا مکمان دا فالتو اختوی अगर बोल पो मजा मजा बने रजे हो दिन लावा कचरे सूख दी सीधी चगद आई जो पर आरवान वक्त पल मखद फालतू युक्त होना बच कोल गुआर अगीर पारा अगीर पार हुडीर आला उडेर बेहतरीन फार्मूला था बेलाडोना विटामिन सी फार्मूला फेस वॉश उडीर अरजान और उडीर आला फेस वॉश दीजिए नो आग जिन्हें चगा पर आरवान वक्त पल स्किन द फालतू युक्त होना बच सातल गुआरी अगीद पर डेर बेहतरीन और डेर आला तरीन फार्मूला बेलाडोना विटामिन सी फार्मूला फेस वॉश ऐशा बशे जिनको दरो रोली और मशवरा में दग दाच द नन सबा द फालतू युक्तो दग मसले डेरी जाती शुरू दी अक्सर बाज बाज जिनको बने दान नरी नरी गुंड की विख्तर अगली हुई दागोरे द वक्सर जाती बाज औकात पेगल तूप की नखकारी हो दवादन बाद अक्सर जितने बेदा नोर मेरा पैदा की या मतलब जनानों को मैं जनान वाले के मसली दी आगे के लिए डिस्टर्बेंस के लिए राजी नागी वजह बनी अक्सर दावे तो बेरा उजी खबरदार जो वक्त नजान ला फैसला ओके उजान द बल फेस वॉश न बल्कि बेलाडोना विटामिन सी फार्मूला फेस वॉश इंतखाब जान तो ओके द निजदे कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना द नवी और जोरदार फार्मूले से तैयार शुई बेलाडोना विटामिन सी फार्मूला फेस वॉश जानता जरूर वाले जी राजी द मर्दान द रेडियो ना जमा द लाइव प्रोग्राम की पहले लाइव कॉलर गोर मची सूख दी ओ द जान सर सुखवागत राखर उड़ी राजी जी द लाइव कॉल लारे दी सर खबर को दावर तो हुआ यूची सकोई सनकोई और द इतवार रोज मुकम जे रवाना लेट्स सी फर्स्ट लकी कॉलर ऑफ द शो फर्स्ट लकी कॉलर ऑफ द क्यू भाई मान हजरत सर हम चिंतन बेलडोना मिलावी और सुमा तो न आएगा ना सुमा तो गोर दा खबर है ना गोरो बस सुकुम द मरदान के चेरी सुख जमा फर्स्ट टाइम मैंने गक जमा आवाज हो रही नो अगित चूंकि खपल पर्सनल जमा कम द रेडियो द लिसनर द बारमा का खपल जमा कम खपल पर्सनल नंबर दे काल बरतन रहा मिला हुई बोरे का दावर तो इल गुआरमा कचर द मरदान पर मसीमा बाने जमा द बेलाडोना प्रोडक्शन मिला हुई या तासु जमा सर द बेलाडोना पर द फैमिली की जान शामिल हो इल गुआरी द बेलाडोना पर द फैमिली की जान असर शामिल हो इल गुआरी नो जमा चकम द रेडियो द लिसनर द बार खपल पर्सनल जमा द तरख द जीब कम नंबर दे अगर द तो इल गुआरमा द जान सर गई पर दे नंबर बाने मात द खपल आग नंबर न मैसेज राव ली गई कम नंबर जितना सुपर खपल बाने यूज को हुई या मतलब तासु समसलन वीजा के जमंग लखवाना तासु बरोजाना जितना मैसेज दर्जी या तासु मालूमात दर को लेगी नतासु मुंसर द बेलाडोना पदा फैमिली की जान शामिल की दगा नंबर द जान सर के दे ततासु बल समली की दे ततासु डॉक्टर हैदर उली की बुरा नो मुड़ तो उली की डॉक्टर हैदर ली मुमन दुर तो उली की चिदा द तपत लगी चिदा द अगर पर्सनल नंबर दे दादा रेडियो नंबर न दे दादा अगर पर्सनल नंबर दे वा नंबर दे सीधे 0333 75 75 672 ऐसा नंबर देगा ना 0333 वो पिंजा स्पग वो द्वा द मरदान द सिमी सुख आवाज हो रही द मरदान द रेडियो आवाज हो रही न तासु कुछ सुख मंग द मैसेज डालेगी ना कोशिश कोई चिता सोर सर मरदान लिख गई और मरदान सर खपल जेम लिख गई दाई आवाज नहीं तो मरदान द सिमी खलक बजम आवाज हो रही कता सुकुम से किम जमा आवाज हो रही है ना नतासु दुखपल इलाके की उम्र सर ली गई और द मरदान द रेडियो फ्रिक्वेंसी और सर ली गई जमंग पता लगी दा जमा दा कम लिसनर दा या लिसनर दे दा द मरदान द रेडियो नजम सर बेदा द बेलाडोना कम फैमिली दा पदे के मंग सर शामिल है शोदा लाइव कॉलर गुरु जमंग सर मंग सर द लाइव कॉल ला रे सुग्रा रवान दी ओ द जान सर इस खवागो औ से द जान सर इदन तराखरा उड़ी दी राजी द लाइव कॉल दिलारे पहले ने लाइव कॉलर गुरु चमुसर सूख दी और सोवेल घोड़ी लेट्स सी फर्स्ट लकी कॉलर ऑफ दिस प्रोग्राम बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू
1: वालेकुम अस्सलाम
0: व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सो खबर कोई औ दकम जने जी आयशा बुनेरी बुनेर बुनेर की रकम देने काल में लोकड़े दे रकम से
1: अमाजू
0: ना द बुनेर अमाजू के राजू तो तुम मर्दान ना तो कम से याद है तो बुनेर याद है कम से याद है
1: बुनेर याद हो कन भाई
0: ना आयशा बुनेर ही याद है
1: जी भाई
0: ना नो अमाजू बुनेर के राजी सा मड़ा दरोग मोए कन गोर मत होने लगी अमाजू।

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी।

0: 20 acne face wash kum chi da oily skin aw da acne da para dir behtareen formula da kum chi pa salur urazu ki sasud skin acne pimple pa mukammal to gbane khatmai aw yawaz da na da daga dano chukum daun di aga hum pa mukammal to gbane khatmi gi pa de ki behtareen active ingredient shamil di leka benzoyl peroxide salicylic acid tea tree oil aw clindamycin kum chi yo dir behtareen antibacterial anti-inflammatory ingredients thi. Aw daga products dermatologically tested hum di. Kum chi sirf aur sirf pa saloor uspo ki danana danana stasu dani aw da danu daguna pa mukamal togabani khatmai. No zar tar zara da nizdi cosmetics general aur medical store na da Belladonna cosmetics Dr. Heather anti-acne face wash Dr. Heather anti-acne cream wakhlai aw da skin dere masale aware kai. Da mazid malumato da para zamung daga website visit kai www.belladonna.com.pk belladonna.com.pk
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मद्धम हो जाते हैं ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़ी शिफा की जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो और अब वही यकीन वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल सवाबी ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है जेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद जो अपने तजर्बे इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज एक खिदमत और एक मिशन समझती है चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द दमा एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो खवातीन के अमराज या आसाबी थकन हर बीमारी का कुदरती महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में यहाँ ना खतरनाक दवाएं ना साइड इफेक्ट बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 03319394941 आपकी सेहत हमारा अज़्म आपका एतमाद हमारी पहचान हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी कुदरती शिफा दिल से दुआ कुदरती शिफा दिल से दुआ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी
2: ये है एक दुनिया इल्म अमल की यहाँ पर नया दिन सिखाता है कुछ नया यकीन के साथ जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की लगन जगा रहा है द कादी आजम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस खैबर पख्तूनख्वा एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग पर मबनी जदीद निजाम तालीम सेंट्रल एग्जामिनेशन सिस्टम तफरीही और मालूमाती टूर्स और इल्म अमल का एक मुनज्जम मरबूत तालीमी माहौल 200 से ज़ायद तलबा और तालिबात के लिए इस साल भी मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट बराए फर्स्ट ईयर का इनेकाद 5 जुलाई 2026 को तमाम कैंपसेस में होगा आइए और अपने बच्चों के कामयाब कल का दानिशमंदाना फैसला आज कीजिए हमारे कैंपसेस हकीमाबाद नौशहरा बाग इरम मर्दान शेरगढ़ मर्दान सवावी जैदा और मैनी चौक कोठा या हेड ऑफिस के नंबर 09382801 पर राबता कर सकते हैं
3: माँ वेले माले दशारजा ने काली रावड़ा
4: जो उस्ता कालू दपारा शारजी तसिंगलार शमा
3: ओहो पमीना बाजार दुबई की दशारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची दुबई और शारजा टूल वैरायटी मौजूद दा
4: नुदा सिवाया का ना
3: शारजा ज्वेलर्स प्रोप्राइटर जे ब्रदर्स फोन 09382732

0: ये है रेडियो दिल पर आपकी दिल की आवाज।
1: मामू का बोका खुले दे बोका नोटिस चैन।

मेरी मोहब्बत का एक ही उसूल है, वफादार है तो बदसूरत भी कबूल, वफादार है तो बदसूरत भी कबूल।

हमको मोहब्बत थी हमको मोहब्बत भी उनसे हुई हमको मोहब्बत भी उनसे हुई जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं था। माना कि तुझसे दूरियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई पर तेरे हिस्से का वक्त आज भी तन्हा गुजारता हूँ कुछ।

0: तेरी इश्क में उस मुकाम पर आ पहुंचे।
1: अगर होता तो इश्क दोबारा कर लेते
0: हम तेरे इश्क में उस मुकाम पर आ पहुंचे जहां दिल किसी और को चाहे तो गुना

बस इंतजार रहता है तुम्हारा, बस इंतजार रहता है तेरा। बस इंतजार रहता है तुम्हारा, कभी सबर से कभी बेसब्री से।

0: कर देते।
1: उन्होंने मोहब्बत पर हम बस इतना ही लिख पाए, बहुत बहुत कमजोर रिश्ते थे, बहुत मजबूत

0: ये है रेडियो दिल पर आपकी दिल की आवाज।
1: मामू का बोका खुले दे बोका नोटिस।